बाबा जय कर करते तीर्थ हुए सो करड़ा खुदाई तो रहाओ विश्व चसया करिया पहरा थी बारी मा हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के देवेश राग त्रासी ममला पहला गगन मै थाल रग चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मले अनलो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आर।

दर्शन देखनी मांगु तेरा। पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा, हे बिनंती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। धर्मा दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखहु टल गुरु सेविया, एहन सह

गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब सचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी

नमस्तं गिरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्तु अबन्दे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं गरीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महान्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनीन है अनाद है अजय है आजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूट है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अभंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है नृसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम्य है अजम्य है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबह है अगह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदान नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथ निरसंगी परमात्मा नमो पान पाने

अनंगी अनाम्य समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति में पूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमी अभोगी अभोगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर मे नमो नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साध साह नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो अस्तंग इशनान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध कर्ता अधु उर्ध अर्धं अगं उघहर्ता परम परम परमेश्वर पुरुषपाल सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल अशेदी अपेदी अनाम अकाम समस्त पराजी समस्त सताम तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वंग नरेनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अपंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राजे नमो साय साजे नमो साय साहे नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिद्य अपिज्य समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदि सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग त्राणं सर्वंग सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भोक्ता सर्वंग जोगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूपनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमंत्र मान देव पेवे आदुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेखाद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख हुंदे सौर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसावे फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख ताम हूं नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत

प्रणाम निर्भय निकाम। आत दूत प्रचंड मित गत अखंड वालिस्य कर्म वादृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडन बाड्य चाचरी छंद त्वे प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं नृनामे अकामे पुजंग प्रयाद छंद

सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता।

परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माता न जाते न पाते न साकं सुरी के अमितो अमी के सदैवं प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंतु है प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुल सलाम है समझ सुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है।

कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलम प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अज स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो बसा है कि आत्मा प्रवाह है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अभंग है मद पार छंद त्वे प्रसाद मुन मन

मन मानिए है जग जानिए सर्वम पर है सर्वम कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृत।

नियमो निनरागे नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते सदा सचिदानंद सत्रम प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्री मुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते स्वयं पव सुपं सर्वदा सर्वजुक्ते

साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम की उतन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवा

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवि उबात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सुबह तुम कावा हो आप हाथ दे मोहे बचावा हो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख्य सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाट कोई अवर न त्याहूं जो बरचा हो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास निवरिये हूं जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करियो रचा राख ले मुहिराखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जग मनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहम्मद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आकर्ख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जान बेद भेद और आलम।

सुने गुंगजोया सुरसना पावई, सुने मूढ़ चतलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्ट।

सुनर मुंडा ने अमृत खोज दे सो अमृत कुरते पाया पाया अमृत कुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी चंद सब तू दोम उपाय।

कहते पुनीत कहते पवित, सतगुरु रहे भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तुरे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जात पाव हाराती दुसनियारु एनन मत वेद हथियारु पाव खलागन तपताव भांडा पाहो अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसा।